राखे साध जागत होए रहे बिस्माद अमृत हृना पियो प्यारी तेर सराती हुए तृप्तारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हो जाइए सा संत बड़ भागी पाईए आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली अनंत मोली फल फुल पेडे इरस राती बौर न छोडे आन न रसकस लवे न लाई कहो नानक पुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तन सजी बार एसी मध्य बस्ते पार एसी पीतर सुनीत साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत भोजन करे आहारी हरहाओ मंत्र अर्पी सेव करी जय कौन सो जुगत जित कर पीजे पाए लगो तब मेरा तेरे कौन सो जान जो सौदा जोर है मैल सा का किन बिद पावे कौन सो बिद जित पीतर बुलावे तू वड़साहो जाके कूड़ बन जा रे कौन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत ने कर पाया अमोर रतन साध दिखलाया हर कृपा जामे ले साहे कहो नानक गुर कह वे साहे गौड़ी महला पंजवा गुवारे री रैन दिस रहे करंगा प्रभ को जाने सदगी संगा ठाकर नाम की उन वर्तन तृप्त अगामन घर के दर्शन हर संग राते मन तन घरे गुर पूरे की सरणी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको ब्योहारी अवर न जाने बिन रंकारी हर शोक दुहू ते मुक्ते स अलिप्त जो घर जूते जिसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान तरते संतन की महिमा का मनमखानो।

है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान रहाओ। जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवरे तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सा गुरते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुर्ग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेग शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे पर ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंग बुद्ध का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हरदे टिकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, दसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस गृह में कोई जागत रहे। सावत वस्त को अपनी लय रघाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सुखुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन धान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

आमन जान रहे सुखसारे, है बिन से निरपो घर त्याया, सा संघर के गुण गाया रघाओ, चरण कबल अंतर तारे, अग्न सागर गुर पारे उतारे, बूढ़ जात पूरे गुर काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक ते गुर बलिहारी, जिस पेड़ तगत पई हमारी, गौड़ी मोहल्ला पनवा, सा संगता की सरणी परहो, मंतन अपना आगे तरहो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, तेमर सिमर सब तत् बुझाई, रहाओ तज अभमान जन मरने वारो, हर के दास के चरण नमस्कार हो, सास सास प्रामणे समाले, तो तन संचो जो चाले नाले, किसे प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ताकी चरणी लाग, गौड़ी मोहल्ला पनवा, तुके हरे किए खिन माहे, अमर दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरदेव, सेव को दीनी अपनी सेव, हरहाओ मिड़गी चिंत पुनी मन आसा, करी दया स्व गुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए सुमाए, तील ना परी जा गुर फुरमाए।

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोर जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई मन बांझत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कर दिवसे भगवान ओ नानक से ही जन पूरे जिना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवां खांदा पैन दा मुँह कर पाए तिसनु जो है तू तरमराए तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना होर जन्म परमे बोजू ना रहाओ सागत की ऐसी है रीत चोज करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन तारिया सोई ठाकर मनो बसारिया बदे विकार लिखे बोकागर नानक उधर कृपा।

कीनो मीत सगल मनोरथ मुगतपादीत ऐसा मीत करो सब कोय जाते विरथा कोय न होए हरहाओ आपने स्वर दे ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रघना गिद्धी बोल तराम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सबल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी मोहल्ला पंजवा कोट बिघन हिरे किन माहे हर घर कथा सा संग सुनागे पीव तराम रस अमृत गुण जात जप चरण मिटी खोता सुरहाव सर्व कल्याण सुख सहज निधान जा कै हृदय से भगवान औखद मंत्र तंस विचार करने हार दे मैं तार तस परम पजो पार ब्रह्म कहो नानक अटल इहो धर्म गौड़ी मोहल्ला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन तरण पै सागर।

शरण परे प्रब अंतरजामी नान कोड पकरी प्रब स्वामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय पेट संग, हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

चला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ। खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार। जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी। हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल। मोय निर्गुण मत थोरिया तू सदगी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे। तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे। माल पिता सुद बंद को तू मेरे प्राण आधार। सा संग नानक भजे हितरिया संसार। गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे। सर्व कल्याण सुख सद पावे हरहाओ। बन मन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी। जिन घर पाया से वडभागी ब्रह्मादक सनकादक चाहे। जोगी जति सिद्ध अर आहे जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे। ताकि सरंजन बिसर तनाही वडभागी घर संत मिलाही। जन्म

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचर को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्त।

पायो बाल बुध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौलो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटिया तो आंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भए जौ लो मेरो मेरो करतो तौलो भे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौलो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरमल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आगे ओ रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासुरी एक स्वामी उद्यान टाग्यो निरपो पय संत प्रमंडारियो पूर्ण सर्वाग्यो जोगज करते कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओर तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रत

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवां, हर राम राम राम रामा।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय।

कर्म समान है। एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सज जागे, पाए रच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मिले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरप हमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दे संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साह भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाड़ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुरोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली, तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल भय उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेख पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

ले आप हो जाओ। मानम को सूत को कभे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्मन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़त जो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहु चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अपमाना, बागजो लाए बहे नृत्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर है लबटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर न फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अध परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहु दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल ने

पद पाईए, ना मने सुख होए, सगुर ते नाम पाईए, धर्म मिले प्रसोए, सगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए, सगुर सेवन सो सोने होमे महल गवाए, अवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू, तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घर माए, गुर पाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छिड़ा।

लाख अडंबर बहुत विस्तारा, ना बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, हर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला।

व्यापह ताहू जो एक शाड अन कतह न जाहू या कहिए दियो प्रवनाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख अर ज्ञान ध्यान मरहड मिलो ना।

कुसुमरंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेबद कदू ना छूटी है साकत त्यू कुमार।

या मने अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखो तुर जाकर हर संप नानक करता के श्लोक लालच चूड बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा ही अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो मनहार हो सद आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस से जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनद नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर कै दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे।

नान कुबरे जप हरी सा संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत क्या फिरो ढूंढ या मनो माघे संग तुआरे प्रभ से बनमर कहां फेरागे।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अणा छुटे निट न जाइयो दूत पौड़ी। नानारण ते सीजिए आत्म जीते कोए, होमे अनसो लार मरे तो शोभा दू होए। मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले ते सूरत तनवेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे ओपरा पुरखे पार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तान मन तान अर्पो तिसे।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कटरहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पत्रा की गुर पार ब्रह्म।

पौड़ी अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटे संग साधु तर्म धर्म तत नाम अराधु रूड़ो जे बस्यो रिदमागी ओआ की अड़ाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सागत गावारा जे ही ये अंगबुद्ध विकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माए नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट गहो उगत सियान पत्याग गुर दीख्या दे मन बसे नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अबहारे शास्त्र सिमरत वेद बुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम

दृष्टि आया उस्तत करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत स्यानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा स्यानप शाड एयाना हिकमत हुक्मना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे ए

स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जा कुदरा गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखबनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सदगुर प्रसाद आदगुर ए नमः जुगादगुर ए नमः सदगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन मय मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखिर इन्ने राम नाम एक आखिर इनका एक जे जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दस्त हुआरो नानको संग मुहे उधारो सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कई मन बसराम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन अन दिन जागै प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन हृद सिद्ध नव निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी प्रभ के सिमरन तरख मानी प्रभ के सिमरन हुए सो भला प्रभ के सिमरन सुफल भला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ प्रभ के सिमरन सब के सुज प्रभ के सिमरन नाही जमत्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदमाए सुमाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंत प्रभ को सिमरह से पुतवंत प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताज प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कार्य पूरे प्रभ के सिमरन कबहु ना चूरे प्रभ के सिमरन हर गुरबानी प्रभ के सिमरन सहे सुमानी प्रभ के सिमरन नित्यलयासन प्रभ के सिमरन कमल बेगासन प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार सुप्रा सिमरन का अंत न पार सिमर है से जन जिनको प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत पगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आम निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक तीन दर्द दुख पंजना घटघट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई
मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूध जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्कल होवे अदपारी हर को नाम खिन महे उधारी। अनक पुने चरण करतनी तरै हर को नाम कोड पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। हर सेठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिघना बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला तै हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गद पाई है। टूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही। अनक बिघन जय आए संघार हर का नाम तत्काल उधार। अनक जून जन्म में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू न थोवे हर का नाम कोड पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग। जे मार के गणे जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पन तेरा को ना सुजानू हर का नाम तय नाल पछानू। जय महाभयान तप्त बहु काम तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष तय नानक हर घर अमृत बरख।

अंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण।

सब को बरसावे, सासन कर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, आनक साध के संग सबल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहार, साध के संग कलुख तहर, साध के संग नरक परहर, साध के संग ईगा उहा सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उतरे सा सुन रस, साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसर, साध संग सर पर निस्तर, साध के संग लगे प्रामीठा, साधु के संग कड़का डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक सर पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियान, साध की उमा त्यो गुण ते दूर, साध की उमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊज ते ऊची, साध की शोभा मूज ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।

नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परे पुकारे माह। ब्रह्मज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्मज्ञानी कह हो सो पला, ब्रह्मज्ञानी सोबल पला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्मज्ञानी कह बसे प्रसंग। ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता। ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सिद्ध का करता, ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर धारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी नित्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूपना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, तपते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हर, मन की बासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन, कर्म करत होवे ने कर्म, जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे, केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मन खोवे, इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल, सुख मैं जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर उर तार, पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार,

प्रभ भाव है सोई पुन हो पसर आप हो तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट पर दर्व को घिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की है त्रिजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव कई कोट जख किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गात सब ते नेरे तहू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजो नी फिरे कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ए तरवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सबज प्रभ कहे हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिल निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रखनते कई कोट दर्शन प्रप्यास जिन को मिले ओ प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई

करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

तेन पुरुष का उत्तम कर्मान योगज करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए वे सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कड़ सोह तनवंता होए क्या को गर्भ।

अनद रूप मंगल सजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

रंग सेवक को प्रपालनहार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामृत जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन धान मै हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा घर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

ते जन को कोई न पहुंचन हार, सिरी उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत उदर सिष्ट, चरण कम जाके अनूप, सबल दर्शन सुंदर घर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोहत निहाल, ताके निवटना आवत काल, अमर पय अमरा पल पाया, साध संग नान कर त्याया सलोक, ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, पर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास, अष्टपदी संत संग अंतर प्रव डीठा, ना प्रभु का लागा मीठा, सगल समिगरी एक सकट माहे, अन करंग नाना दृष्टाहे, नौ निद अमृत प्रव का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध अनघा तैनाद, कह न जाई अजन विस्माद, तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक हे जन सो जी पाए, तो अंतर सो बार अनंत, कड़कड़ व्यापरया भगवंत, तरण माय आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, अंत पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट हृदय से सुमाहे, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नान सुपाओ, वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर निखेतर में एक, बाणी प्रभ की सबको बोल, आपे डोल न कब हूं डोल, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाइगे गुणे अमोल, सर्व ज्योत में जा की ज्योत, तारयो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एओ विश्वास, संत जना का पेखन सा ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सो बचन, सर्वे अपी राम संग रचन, जिन जाता सिख की ए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुए सोई सुख मान, करन करामन हार प्रव जान, अंतर बसे बार पी ओही, नानक दर्शन देख सा मोही, आप सत किया सब सत, ते प्रवते सगली उत्पत, ते पावे ता करे विस्तार, ते पावे ता एक अंकार, अनक कला लखी न जाए, जे पावे ते लय मिलाए, कौन निटकम कहिए दूर, आपे आपिया परपूर, अंतर्गत जे आप जनाए, नांग तेजन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनयन आपे खनगारा, सगल समगरी जा का तना, आपन जस आप की सुना, आमन जान के खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीम आया, सबके मद अलिप्तो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले सुमाए, इसते हुए सो नाही बुरा, और है कहो किने कुछ करा, आप भला कर तूत अतली की, आपे जाने अपने जी की, आप सब तारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गतमत कही न जाए, दूसर हो इतना सो जी पाए, सिक्का किया सब परवान, गुर प्रसाद नान के ओ जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आ मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पदवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का ए स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक ते जन को सदा नमस्कार, श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ, अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निट कर पेख, सास सास सिमर हो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित्य त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तर हो, हर तन के पर ले ओ पंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पर परमानंद, नरक निवार उधार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर

तपे तरम हारिया भाई ए तपा ना होवी बगला है भय साधना विचारिया सतपुरख की तपा निंदा करे संसारे की।

सो जब कमावे गो सिखा की काल सच्चा था ए पावे वेण सदगुर के हुक्म है जे गुर सिखा पासो काम कराया लोड़े तेस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे गुर सदगुर अगे को जियो लाए काल इस अगे गुर सरकार कमावे जे ठगी आवे ठगी उड़ जाए इस नेड़े गुर सिख मूल ना आवे ब्रह्म विचार नानक आग सुनावे जे वेण सदगुर के मन मन्ने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी तू सच्चा साहेब अत वड्डा तो जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिले सो तू मिले तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे जिसनू तू आप मिलाएगा सो सतगुर सेवे मन गढ़ गड्डे तू सच्चा साहेब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों भावे त्यों रख तू सच्चिया।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई तिस्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमतकार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना काणी मस्तक होवे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

जो बीजे सोखा है तिसे प्राप्त नानका, जिसनु लिखिया आए महला पंजवा, मंगना ता सच एक, जिस तुल देवे आप, जित खादे मन तृप्ति है, नानक साहेब दात पौड़ी, लहा जग में से खटे, जिन हर तन रास, दुतिया पाओ ना जाननी, सच्चे दी आस, नेचल एक सरेवया, होर सब विनाश, पार ब्रह्म जिस विसरे,

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर न रह जारे, राम उदक जन जलत ओबारे, पाव सागर सुसागर माही, पीवरे जल निखुड़त नाही, कह कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए।

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्मा किए बहुरंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

एक केन ले नहर को नाम हाथ डोर मुकायो तंबोर मरती बार कस बाध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रमत सुख पावे कृपा करके नाम जिरड़ाई हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जमते उल्ट पए है राम दुख बिन से सो कियो बिसराम बैरी उल्ट पए है मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जाने आ रहा तन मैं होती कोड़ उपाध उल्ट पई सुख सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनो ताप अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह दराता जिन राम जान्या तिने पछान्या ज्यो गूंगे साकर मन मान्या ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान तरो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो।

जाओ, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिन सजाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म नावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोन में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाँची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर न रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी, बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहा पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना देखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊचते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करी।

भगत हेत अवतार लियो हो, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दसनाही, तब ओ नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

बैकुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया। रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत हुए रहो तौले प्रगास उजारा। नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई। गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणाना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्यानाना। बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जानाना। एक सुमत्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आनाना। चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब मानाना। जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थानाना। ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथानाना। काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक सुमानाना। कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन मानाना। राग गौड़ी पूर्वी बावन

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

कर छोड़े बार जिन जाए ना तरखर रिसे गैराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाए तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंस कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप आप स्यो लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्टना पैसे कबे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गणका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिद्र सुदम उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती।

सो को न कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए। रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए। कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण। संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान। बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार। सुध कमन पर होए बो, सुज कुंचर बेद व्यवहार। राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार। पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट। उन मन मान मन की मिले, छुटकत बज्र कपाट। भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास। प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरभौ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सह पंग, गुर प्रसाद राग अस। महला पहला कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह सो कर केह। जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक संख। केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिसो कही है। केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनु पौन पानी बै संतर। गावे राजा धर्म दुवारे, गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन। लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोहन तेरे सदा सुवारे, गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे। देवतिया दर नाले, गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनु साध विचारे, गावन तुदनु जति सती संतोखी। गावन तुदनु वीर करारे, गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर। जुग जुग बेदा नाले, गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन। सुरगुमश पय आले, गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते। अठ सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनु जोध महाबल सूरा। गावन तुदनु खाणी चारे, गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा।

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कही है सब तेरी वड्याई कल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पाओ फेरी होवे मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दैसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहा लिवलाए रहाओ जी उपाय जुत गत कीनी काली नत क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कही है सर्ब निरंतर रव रहा नाल कुटंब सास वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस शेद क्या वड्डा पया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल विस्तारी आराम ना फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजे शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्ब ज्योत रूप तेरा देखेया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप निराल में बैठा नजर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद।

अमृत चख सतगुर सेव अमृत शब्द पाख साचे शब्द मुक्त गद पाए नानक विचों आप गवाए आसा महला पहला जो तन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया हृदय नाम नाही मन भंग अनदन नाल प्यारे संग हर जो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी गरस पाया ना पदार्थ नौ निद पाई हरहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान जिनकी संगत परम निधान हर वर जिन पाया तन नारी हर सो राती शब्द विचारी आप तर संगत कुल तार सदगुर सेव तत विचार हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सद पाओ नानक बख्शे पूछ न होए दूजा मेटे एको सोए आसा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक आरत रहे सुमाई एक तरण गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई यो संसार बेखवत अद फौजल गुर शब्दी घर पार लंघाई हरहाओ जिनको आप लय प्रामेल जिनको काल न सके पेल गुरमुख निर्मल रहे प्यारे ज्यों जल अंब ऊपर कवन निरारे बुरा पला को किसनु कहिए दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लइए अकथ कथो गुरमुख।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीप गदे भौजल डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

आए, नदर करे इतना सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसर है दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही, हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही,

बिन कर्मा कैसे लेगी, जेते जी तेते सब तेरे, बिन सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, बिन नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही, कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ, बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम सुमाल, ऐथे ओथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर न पाल, इन्ने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ पागे, पारू रश विचोर न लागे, तिलक ललाट जाने प्रावेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक, आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैलनी खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए, देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण, गुर का शब्द सच निशान, मन ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक न पाए, पंडर पढ़े वखाने वेद, अंतर अवस्त न जाने पेद, गुर बिन सूझी बूझ न होए, साचा रवरे या प्रसोए, क्या हो अखा या खवखाणी, तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साजता गुजरान। आसा महला पहला, काची गागर दे दुखेली, उपजे बिन से दुख पाई, यो जग सागर दुत्र क्यों तरिये, बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिसे नदर करे रखाओ, सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यो मिलन न दे बुरी, सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी, आ विचार मार मन देखया, तुम सामीत न अवर कोई, ज्यों तू रख तिभगी रहना, दुख सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दऊ बिनास्त, त्रिव गुण आस निरास पई, तुरियावस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेव, नानक राम नाम मन रता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर रहाओ, सच नाम जा नवन दपाई, रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार, गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे, ना मोह टूटे ना थाए पाहे, नदर करे ता यो मो जाए, नानक हर च्यों रह सुमाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख पार, हों पापी तू बख्शन हार, तेरा पाना सब किश होवे, मन हड़ कीते अंत गोवै रखाओ, मन मुकी मत कूड़ व्यापी, बिन ख सिमरन पाव संतापी, दुर्म त्याग लहा किश लेवो, जो उपजे सो अलख पेवो, ऐसा हमारा सखा सखाई, गुर घर मिलया पगत दृढ़ाई, सगली सौंधी तोटा आवे, नानक राम नाम मन पावे। आसा महला पहला, चौप दे विद्या विचारी ता पर पुकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी।
ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਉ ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਗ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸੋ ਜਗ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ ਰਹਾਉ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ ਗੈ ਸੋ ਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ ਅਸੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ ਰਹਾਓ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ਤੇ ਸਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਸੋ ਰੜੇਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ

स्वबना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई रहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने अराग यासा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुखोए गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर जमकाल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए सदगुर सेवे तिलना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समाहे रहाओ गुण का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम खाने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समाहे सेवड फागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहन न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी विशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोय रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोय विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोय विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कुमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पिया।

क्यों आखे तू सुपाए भगत भंडार दिगे वर अपने गुण गाक वणज ले जाए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तुरा हो हमे रोईये गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होइए गुरपूरे साबास चलन जानिया लहा नाम सुसार शब्द समाणिया रखाओ पूर्व लिखे ढे से आए माया चलन आज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम सारिया जुए खेलन जग के ओ मन हारिया जीव मरण सुखोय जिना गुर पाया नानक सचे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी बुझ सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार मैल बुलाया रहाओ अंतर नाम निधान गुरमुख पाईए अंदर नाम त्याय हर गुण गाईए अंतर वस्त अनेक मन को नहीं पाईए होमे गर्भे गर्भ आप खुवाईए नानक आपे आप खुवाईए गुमत मन प्रगास सच्चा।

देखो आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मल बटानी सह व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमोला रास।

माया मूठा चेते नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखे उतरी केरे, आबर उपदेश आप ना बूझे।

पय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मनकत ही ना जाए, तवत बुझी गुर सब दी माए, बिनस गयो ताप सा सहसा, गुर शीतल मिलो सहज सुपहाय रहाओ, ताप तरह एक एक बुझया, आए बसे अब नहीं।

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुगदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छिड़ाए प्रीतम स्यों मेरो।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिस मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक कह सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खा खा मोए गवारा।

सदगुर प्रसाद प्रमे सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन मामोनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल आनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कार सेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुग सहज मनसोई करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जान रसक रस गुण गावे मसलत मता सियान बजन की जो तू करह करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया तृप्त अघाए सही जन पूरे।

काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, तप्रव नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेपा निर्गुण रहता, करण करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का।

और पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया। आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे। रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना हीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप। आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई। रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव। कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया। आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय। रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर मना साधा, नाम प्रभु का मने अराधा। किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी। आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी। रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए। आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत निर्मल दास की जुगता। रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन कहां व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी। रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए। कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा। आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते। रहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा। कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट हय रेजा का अपग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचड़े उहर साल।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार टूट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहया मानया सूग सहज इस कर का जानया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकड़ हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुग सहज मेरा तन सुहागा

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर था के पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुंह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संत से हर घर त्याए हर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जांत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाखे मां बिखिया में दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया काल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्य हर का नाम नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर कहू पै बौड़ न जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी

ओंकार सदगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किसदा सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम धार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुर अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा क्यों कीजे दाना रहाओ भागठ सच्चा सोए है जिसरतन अंतर सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार ओ आ जुगा दी जुग है जुग पूरा परमेसर नाम त्यावो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी ते गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिर जनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाय कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मन्ने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर या सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कर सारिये जिस मन उठाए आप तिस नाम सारिये जो उस करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए।

वन्यन वहन्दे बोतड़ा हा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाव भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श पे।

उड़तावे, सेवक कौ निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल हुए आवे, रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे, तिस की सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसने आवे, आसा कर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तै सारे, अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर, सुखे नहीं परवे सारे, साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे, सा संग मिल हर गुण गाए, क्यों जन्म पदार्थ जी तारे, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कौन बे तरिये रे, उमन केर अघा गाकरी, गुर शब्दी पार उतरिये रे, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, तत नानक क्यों जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोल, मन मानक पतिया नारे, आसा महला पंजवा, दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पावो रे, नाम रंग क्यों मन त्रिवताना, बौर नकत हूँ तावो रे, हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिन से गावो रे, खिन में थापे उत्थापन हर, तिस ते तुझे डरावो रे, रहाओ जब देखो प्रभ अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावो रे, नानक दास प्रभ आप पै राया, प्रम पौ मेट लखावो रे, आसा महला पंजवा, चार वर्ण चौहां के मर्दन, खड़ दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मुए शलीरे, जिन मिर मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कलीरे, रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही, मोकम फौज हठली रे, कहो नानक किन जन निर्दलया, सा संगत के चली रे, आसा महला पंजवा, नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सगल रस पीकी रे, रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते, अवर ना किश लाई की रे, भिखारी निरारी अपारी सहजारी, साध संग नानक पीकी रे, आसा महला पंजवा, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख न मन ते टारी रे, रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुर गाम, हर दम नह जाम, हर कंठ नानक उर हारी रे, आसा महला पंजवा, निकी सा संगानी रहाओ, पैर मूर्त पल गावत गावत, गोविंद गोविंद बखानी, चालत बैसत सोवत हर जस, मंत्र चरण खटानी, हौ हौरो तू ठाकुर गौरो, नानक सरन पछानी, राग आसा महला पंजवा, कार बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्याग सगल सियाणपा, पज पार ब्रह्म निरंकार, एक साते नाम बाजू सगल दिशे सार, सो प्रभ जानिए सत्संग, गुर प्रसादी बूझिए एक हर के रंग, रहाओ सरन समरथ एक केरी, दूजा ना गीठाओ, महा फौज लंघिए सदा हर गुण गाओ, जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रसोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दीये सब रस भोग, दीन बंद बजी दाता, शरण राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे, एक सिवन लाओ, रहाओ वेद शास्त्र जन ते आवे, तरण कौ संसार, कर्म तर्म अनेक क्रिया, तब ऊपर नाम अचार, काम क्रोध अहंकार बिनसे, मिले सदगुरु देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की, पली प्रभ की सेव, चरण शरण दयाल तेरी, तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा, नानका प्रतान, आसा महला पंजवा, डोल डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग, खाट लाभ गोविंद।

मालमूत मूड जे मुगध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ। तू आप करता सब सरित तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए। साजुग त्रेता द्वापर पणिए कालजुग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने,

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनी।

कहे कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय कहाए, तापत राखे ठाक रहाए, सिख संगत कर्म मिलाए, गुर बिन पूलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो न कहे आ जाई, अकथ कहो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सूख र जाई, सब दुख मिटे सच नाई, कार बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, तिर पावन सूजे आप गुवावे, पानी बूझे सच सुमावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सुवारण हारा, आसा मोहल्ला पहला, लेख असंख लेख लेख मान, मन माने सच सुरत वकान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख अपार, ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरण हूं पछाण, रहाओ माया मोह जगबादा जमकाल, बंदा छूटे नाम समाल, गुरसुख दाता अवर न पाल, हलत पलत निर्गी तुद नाल, सद मरे ता एक लिवलाए, अचल चरे ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन नाम साए, गुरमुख होए ता सच सुमाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब तापी ताप उताप, सर्ब निरंतर आपे आप, किसे ना पूछे बगसे आप, तू पुर सागर मानक हीर, तू निर्मल सज गुणी गहीर, सुख मन भेटे गुरपीर, एको साहेब एक वजीर, जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर भेटे सा फिरे अंकारी, जग दुखिया सुखिया जन कोय, जग रोगी भोगी गुण रोय, जग उपजे बिन से पल खोय, गुरमुख होवे बूझे सोए, महंगो मोल भार अपार, अटल अछल

पहला एक मरे पंचे मिल रोवे हौ में जाए शब्द मल तोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन बूझे सगली पर खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सबसे सिर तोही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन खोए जिस बीती जाने प्रसोए आपे करता करे सोए जीवित मरना तारे तरना जय जगदीश परमगल सरना हौं बलिहारी सदगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै तरना निरप आप निरंतर जोत बिन नावे सूतक जग शोत दुर्मद बिन से क्या कहे रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए कौ सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख परहार सह सोचीत तन मन संपव कृष्ण प्रीत तीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भगति जन्म बिरंत हर गुण गावे मिल परमारंत आप मरे मारे पी आप उपाए था प्योताप सिट उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल तल सब गीताए नानक सूतक जन्म मरीज गुर प्रसादी हरस पीजे राग आसा महला पहला आ विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर माने मनते मन तीरा ऐसा साओ सरा पी कर साची नगर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साज रता पैकार सिवत सहज कर गुर करतार आसा मनसा सब जलाए राम नारायण कह कहाय गुर ते वाट महल कर पाए कंचन काया ज्योत अनूप तिर पवन देवा सगल स्वरूप मैं सो तन पल्ले साच अखूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन तल तार रगावे बार जातो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जे वारस नहीं कहे आ बूझे पेता माता जग स्यो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को तावे अवगुण तोवे बिन गुर सेवे सहज न होवे हीरा नाम जवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परखे नदर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी गुरमुख सचा नाम मुरारी अरहाओ आए निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुम पछान साचा हरख नाई ते सोग अमृत ज्ञान महारस भोग पंच सुमाई सुखी सबलोक सगली ज्योत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई ताए उसारे हुक्म समावे हुक्मो वरते ज्योत पावे गुर बिन पूरा कोई न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बिन बूढ़े अवमान बिन नावे क्या लहस निदान किसका अन तन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पागी बौरा बौराना बूढ़ जग देखिया तो डर फागे सतगुर राखे से वड़ फागे ना।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अन दिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल विद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम।

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर,

गर्व मन जाइए, मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए, साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गां बख्शनहार शब्द कुमाव ही, नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए, आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए, गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई, चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई, आपे दे वड्याईया दे तोट न होई।

साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सो पाया साते परताई, गुर बिन किरे ना पायो केती कहे कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत रड़ाए, मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन घर नाम न छूटती मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेव, जे ही सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड्याई, गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटिए दरगे पद पाए, आसा महला पहला रूड़ू ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वडे भाग सतगुर मिले पाइए पद निर्बाणी, मैं ओल गिया ओल गी हम शोरू थारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे, रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाणे पद पाईए, साचो दूर न जानिए अंतर है सोई, जय देखा तैराव रहे किन कीमत होई, आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहालिए क्यों कीमत पाई, जीम दया लाहा मिले गुरकार कमावे, पूर्व हो वे लिखिया ता सतगुर पावे, मानमुख तोटा नित है भरमे फरमाए, मानमुख अंध न चेतई क्यों दर्शन पाए, ता जग आया जानिए साचे लिवलाए, गुर भेटे।

जियो प्राण सच त्याई है, लाह हर गुण गाय मिले सो पाई है। हरहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हो जीवा तुसा लागे मैं टेक आधार तू, दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सज परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख कर पाओ उस हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे,

नाथ नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदियां तार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होय आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

अष्टपदियां कर अठवां काफी गुरते साख उपज जिन तिसना अगन बुझाई गुरते नाम पाइये वड्डी वड्याई एको नाम चेत मेरे पाई जगत जलंदा देख के पर पै सरनाई हरहाओ गुरते ज्ञान उपज।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेकिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा चंता की जात एक

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्श

सो करी प्यारे, आवर किश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए हर नाओ साई कार कमावनी प्यारे, पुर मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटजन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेखना होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया।

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बांधया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाए जन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया ताड़ पांडे जन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने एन बिद साहेब रमत रहे चचे चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाई गए आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जच लग चौरासी तीह पवया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहया दे दे वेखे हुकम चलाए ज्यो जिया घर जक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एको रव रहया सब थाई एक वसया मन माही तट टंच करो क्या प्राणी कड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जमन हारो अपना पाज पड़ो तुम घर सरना ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सेई जा निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना किसे सिरे वो तासु पाव सर्ब निरंतर रब रहे या टड्डे टाए उसारे आपे यू तुस भावे तिवे करे कर वेखे हुकम चलाए तिस निस्तारे।

जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, की वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन प्रताप है, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवे चमक, हर बाज रखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया, सदकहे नानक चेत रे मन, मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पहंतिया, दुख अत पारी राम, मैं गुर पूछा अपना, साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया, पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या, तेल तामन तातो, जाऊ मग बदा खाए चोटा, शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़या परदेसिया, किर पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मस, की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी, जाल बदक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, परत कार चित लाए हरस्यों, छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन, जीड़या परदेसिया, नदियां माव शून्या, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, ओ जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे, सदगुरु जन चेतया, बिन नाम हर के परम फूले, पचे मुद अचेतया, हर ना भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे, मेल चिरी विशुन्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला, साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया, सच मन वसाया, कामन सहजे माती, गुर शब्द सी

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए।

शांत कर तीजा साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत करो।

तेरा गंड लागे गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर बसया आए नाम या जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया। ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। यों कहे नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खिज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है सच शब्द मालख हो। ओ निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए। जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो चित आया। एक जंत परम फुले किन से आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। किन से आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। यों कहे नानक क्या जंत विचारे जात परम फुलाए। सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वडियाई तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी तेरी कुदरत कहण ना जाई। सच्ची तेरी वडियाई जाको तुद मन वसाई। सदा तेरे गुण गावे तेरे गुण गावे जंत पावे सच्चे स्यों चित लावे। जिसनु तू आपे मिलहे

सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया, गुरमुख पाए राम हर नामो हर नाम देव, मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए, सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया अनहर तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी नानक दाद करी प्रवदाते, ज्योति जोत समाणी मनमुखा मनमुख मोए, मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे, दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया, दुर्गंध मड़े चित लागा जो रंग कसुंभ दिखाया, खिन पूर्व खिन पश्चिम छाए, ज्यो चक कुम्हार पवाया, दुख खावे दुख संचे पुग, दुख की दर्द वधाई नानक दिखम सोहेला तरिये, जाय आवे गुर सरणाई।

में नाम समाया, जिन अंतरे राम नाम वस, तिन चिंता सब गवाया राम, सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम, मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया, राम नाम गुण गाए, दुरमत कबुद गई सुध होई, राम नाम मन लाए, सफल जन्म शरीर सब हुआ, जित राम नाम परगासया, नानक हर पसदा दिन राती, गुरमुख निरकर वासया, जिन सरदा राम नाम लगी, तिन दूजे चित न लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे, बिन नावे अवर ना पाया राम, राम नाम मन पाया, परम सुख पाया, अंत चलदिया नाल सिखाई, राम नाम तन पूंजी संची, ना डूबे ना जाई, राम नाम ए जुग में तुलगा, जमकाल नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख राम पछाता, कर कृपा आप मिलावे, रामो राम नाम सत्य, सत गुरमुख जानिया राम, सेवको गुर सेवा लागा, जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम, मंतन अर्पया बहुत मन सरदया, गुरसेवक पाए मिलाए, दीना नाथ जिया का दाता, पूरे गुर ते पाए, गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए, राम नाम मंत हिरदय देवे, नानक मिलन सुपाए, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा शांत महला चौथा, कर दूजा हर हर करता दुख बेनास, पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गद पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए हर नाम, हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर हर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतत पामन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल जुग उत्तम, हर जपिए सब गुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जबत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया दुख बिनसया, हर नाम परम सुख पाया, सदगुर ज्ञान बलिया।

जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किस जानदा सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरम खिरदा सुध है हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने, हर संतां नूं होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान फालिया लय तूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा, गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। तर सेवे पूरा सतगुरु भुख जाए लहे मेरी, गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजया तिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर घर होया हर घर मन उठा, आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिस की तिसना पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे। जन नानक कहो हर कृपा कर निद जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे। जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा। जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया। जन नानक ऐसा हर

सगल गुण सुग्यान पूरन अपने प्रापाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रापागे बिनवंत नानक सा।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मिल नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिले सच, ता तिन्ही सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया, जिन कै हिरदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है, पढ़ पढ़ परिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल, होर होमे चखना चाख, महला पहला, लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ पविया तेतो लविया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सौवे जिया अपना किया, आनना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपा संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वटे आए ओए बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पेवत वड़ तागे अवरा खत ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गऊ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तय जप माली तान मले छाखाई अंतर पूजा पड़े कतेबा।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगना पिख ना पाएंदा। श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्याणी है पितरी चोर करे, वड्डे हथ दलाल के मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। महला पहला, जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस नित नित होए खुवार, सूचे ए ना आखी है बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसे आसोए, पौड़ी तुरे पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया

कैसे करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाई है एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पए समन एक उपर रहन खड़े। तिना सवारे नानका जिन को नदर करे, महला दूजा आपे साजे करे आप, जाई पे रखे आप। तिस विच जंत उपाए कै देखे थाप उथाप, किस नू कहिए नानका सब कछ आपे आप। पौड़ी वड्डे किया वड्याइया किस कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाग। साई कार कमावनी पर छोड़ी तिन्न पाए, नानक एक ही बारी होर दूजी नाही जाए। सो करे

गोर चरण लाघम बिनवता ऊषित कह जियो पाया, कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभो,

तपि सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा कर अंत तउ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु भव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना राज भोग अरशद्र सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर।

ब्रह्म पाती बिसन डारी पूर संकर देओ, तीन देव परतख तोर है करे किसकी सेओ, पाखान गड़के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है।

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फेरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन सुध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साहिब जोर नहीं फुरमावे, कारी बोलिया बन नहीं आवे। अरहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई। सतर काबा कढ़ी पीतर, जे कर जाने सोई। निवाज सोई जो न्याओ बिचारे, कलमा अकल है जाने। पांचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने।

साखी शब्द सुरत नहीं उबजे, खेंच तेई सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बसा, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछाने

राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यों पूल नहीं कहिए रघाओ, कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए, सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत सो

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना।

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीने कछु न होवे नाही राम एयाना। पूजो राम एक ही देवा साचा नामन गुर की सेवा। रहाओ जल के मज्जन जे गत होवे

अबाद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तब गुर ज्ञान। भगत जान पै हरन परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तान संगत प्राण। सदगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस। संत प्रेम माजे दीजे देवा देव रखाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो। असंत पापी सन रविदास पणे जो जाने सो जान। संत अनंत अंतर नाही आसा तुम चंदन हम इरंड बापरे। संग तुम्हारे बसा नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जय।

हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पी आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, इउं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता, माटी को पुत्र कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरयो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बद क्रम रस कसे लोभाना, बिरस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई, आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचानिया, तन तन पाया तरणी तार, मिल जन संत सुमानिया, महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़ी।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौसन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

अपन हाथ मतात सियानप काहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमामन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवा सब त्यागे जंप ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो।

सगल सिट को तनी कहीजै, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो,

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप

साध संग नानक दर्स पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती

ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते थाए सा संगत कौ जोई न सके मर मन तो वे पाए आमु आए परे शरण आए गुज पाप को बौध पर जार मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करत जा के कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा आप जस मिटे होवे जग कीरत दर गए बैसन पाइये जम की त्रास नास होए खिर में सुख से सेती कर जाइये जाते काल न बिरथी जाइये आठ पैर सिमरो।

गुजरी मोहल्ला पंजवा कबू हरस्यो चीत न लायो धंधा करत बेगानी औद गुणित नाम ना गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक युद कर तायो बिसरत प्रभ केते दुख गनिये मामो नी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो नाम होए कुमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्योहार मिथिया पसदा भगवंत रखाओ नाम एक आधार भगता ईति आगे टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री तर शरणता की गही मुगत जुगत रवाल साधु नानक हर निध लही गुजरी महला पंजवा कार चौथा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद चाड़ सगल सियाणपां।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझगी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

आहे साहे सदा संभालिए आपे बगसे करे रजाए से ही नच है जोत भाव है जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे।

हुक्मे सिरट साजियन, ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति हूं सब चानना, सदगुर शब्द सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण, सिर तंदे लाया, माया का मूल रचायोन, तुरिया सुख

सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सांत वसे, जप हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावे गुणी निधान, हर सुखदाता मन वसे, होमे जाए गुमान, नानक नदरी पाई है, ता अनदन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया, मन सहजे जित्ता, ते जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, अनदन हर के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मित्ता, श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जी अनदिन घर ले वलाए, सदगुर पुछे सच संजम कमावे, होमे रोथ जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे होमे मेट समाए, नानक तिसनु मिलया, सदा सुख पाईए, जे अनदिन घर नाम ते आए, महला तीजा, अंतर कपट मन अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए, कपट कीते हर पुख ना पीजे, नित वेखे सुने सुभाए, दूजे पाए जाए जग प्रबुद्ध, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा।

का बोलिया प्रवान है दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सच नाए जिसनु हुए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता इहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिरपते ज्यो सुन्ये कर काओ महला पंजवा प्री मिलावा जाथिए साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसर नानक रविये नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किने ना होड़िए फौज ताणी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी अवधूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िए तै गुण इनके वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िए हाँ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए श्लोक महला पंजवा केलवग सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे नानक विसरे ना।

पार्क कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनव मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्स दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी।

भगत मंगै हर भगत पाईए प्रभत आईए जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अरप तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल फगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भए

नाम जबत कुल सगले तारे राम, हर नाम जबत सुहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नागी प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना, शुभ दिवसे आए गय कंठ लाए प्रऊच अगम अपारे, बिनवंत नानक सबर सब किश

कोड़ अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

मंगण नो हाथ जोड़ खली सब होई। तु जेवड दातार मैं कोई नदर ना आवई। तु सबसे नू दान दित्ता खंडी वर पंडी पातालीपुरी सब लोई।

आहार बिख माया तन संच मर अंत होए सब शार कर्म धर्म सो संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पावे दर गए होए खुवार पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही वेचे रतन तरे आप लहाए करे जिस किरपा

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाईया, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आ डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते योगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला पंजवां कार पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं किछ पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावे, एक तिल ताका मैल न पावे, सुहावी कौन सुवेला, जित प्रमेला रहाओ, लाख भगत जा को आराध, लाख तपीसर तब ही साध।

अरहाव सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दिट सुजानी सचगुम तुम्हारा तत् निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना वढ़ंस मोहल्ला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रोच

पूरे मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ंस मोहल्ला पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर प्रा पे निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ंस महला पंजवा।

प्रीतम भाई मैं मिल्यो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सा वेदन जाने नित सुनावे हर कियां बाता। हम एक खेन तिस बिन रह ना सका।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर

मामना साभ्यो पाई ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिले कर्म हुआ तुर कदे सब उपाय ने आप आपे नजर करे।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप छाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत नाली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

मन अंदर सच्चे शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम। गुरमति मन कर वसया सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए के एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्म वडभागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिवलागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे, वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजी है जा सदगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे न चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे सब परखियन ते सच्चे के दरबारा राम, खोटे दर के सुटियन उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया, बिख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया। मनमुख संता

वे तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया तू वड़दाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सकाई तिस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर घर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मिले करे सोई राम जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पलया न जाई।

मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवाणु नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो कीता वेखे साहिब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी या सो जाने आपे वेखे आपे बूझे आपे हुकम पछाणे जिन कछ किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए ओ संसारो वढांस महला पहला दखणी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा पर्वत गारो जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलाख्या पारो दोए पुल जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन अहे निस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो अरहाओ तो सिरजी मेदनी दो सुख देवन हारो नारी पुरख सिरज है बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देजिया आधारो कुदरत तख्त रचाया सच नबेड़ नगारो आवा गमन थिरजिया तू थिर करने हारो जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो उडड़े नाम सारिया बूडड़े क्या तु चारो गुण छोड़ बिख लद्या अब गुण का बन जारो सदड़े आए तिना जानिया हुकम सच्चे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुक बदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो।

ना पाले आम नराल तंदे बादी करों चिड़ा मनखारो आजकल कर दिया काल ब्यापे दूजे पाए वेकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंध गुबारो वा ना जल्ले फुतलाइया ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सीगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिसे कारबारो इबके राहे जमन नागी पछताने सिर पारो बिर सच को बेली नागी साचा यो बिचारो बाबा रोवे रवे सो जानी है मिल रोवे गुण सारे वा रोवे माया मुठड़ी तंदड़ा रोमन गारे वा तंदा रोवे मायल न तोवे सुपनंतर संसारो ज्यों बाजीगर परमे फूले

मैं फिर सचड़ा गए सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सदगुर सेवे नाम संभाले सदा नाम संभाले सदगुर है नाले सदगुर सेव सुख पाया सबदे काल मार सच उर धार।

पौड़ी। तू करता सब कुछ जानदा सब जी तुम्हारे, जिस तू भावे तिस तू मेल लहे, क्या जंत विचारे। तू करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे, जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया सब दन लागो पाओ ओस नु सुख ना उबजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए ससंजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए जिसकी मुठी विच जगत सब आया तिस को तलकी किसे दी नाही हार दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तू ऐसा हर दीवा

नाच मात पिता सुद बंधव नाच कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी धड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया धड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जन तो पाए काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते को परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है तू साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिए रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर में ले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो योगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

निर्मल नाम जपो सदगुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो सदगुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो।

मन रे समझ तव मत लागा, नाम सार अनस लूप हन, फिर पछताए अभागा रखाओ। आपत को हरख जाद को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इव रस खोया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सुवड भागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखै, करे अंदर सच पाए।

अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुली प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिन्नी नाद है प्यारा, तुने आव जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

प्यारा आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखा। मेरे मन जप राम नाम उमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश बजाहा।

ज्यो पिता पूर किरपाला सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथके गुर गोविंद सलाहिए पाई मन तन हिरदे तार ताचा साहिब मन वसे पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजे पाई से तन होए शार साध संगत को वारिया पाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जेते सब किश होए गुर पूरे जानाया पाई बिन अवर ना कोए रहाओ नाम हुणे पचमोए पाई गणत न जाए गणी विण सच सोच न पाईगे पाई साचा अगम तनी आमन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरम कोट उधार दा पाई देनावे एक कणी सिमरत सास्त सुध्या पाई विण सतगुर परम न जाए आनक कर्म कर था क्या पाई फिर बंधन पाए प्यारे कुंडा सोधिया पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम त्याए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल सचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोड़ मदे जन पाई गे पाई विरला कोई कोए नान करता सच नाम पाई तुण मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवा दो तुके जाओ लो पाओ अपाओ यो मान तौलो मिल न दूराई आन अपना करत बिचारा तौलो बीज बिखाई माधवे ऐसी देव बुझाई सेवो साध गहो ओढ़ चरना नै बिस्तरे मोत चसाई रहाओ रे मन मुगध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पा त्याग आन तू रचिया पुरजो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साध काबक ना इउ जानो जैसे पवन चुलाई कोड़ पराध अशाद्यो इहो मान कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोगरे बनता माया सन बंदे ही अंत की वार को खरा न होसी सामिथिया असने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संज्ञा कर देही तीनी जल कुकर पसमेही होए आमरो ग्रे में बैठा करण कारण बिसरोही अनक पान कर मणिए साजे काचे ताग परोही तूड़ जाए गो सूत बापरे हे पाशे पछतोही जिन तुम सिर जे सिर जसवारे तेस त्यावो देन रहने ही जन नानक प्र कृपा तारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोरठ महला पंजवा गुरपूरा पेटो वडभागी मने पया परगासा होए न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार है आगे सुख पाछे सुख सहजा कार आनंद हमार है रहाओ अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुरचरणी लागे एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो मनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सगले दुख बिनासे सोरठ महला पंजवा सुखिए को पेखे सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी करण करामन हार स्वामी अपन

संत संगजा का मन शीतल ओ जाने सगली ठंडी, होमे रोग जा का मन व्यापत ओ जन्म मरे बिल लाती, ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया ताको सर परगासा, अज्ञान अंधेरे सू सनाही बौड़ बौड़ परमाता, सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मांग है, जय कीर्तन तेरा साधु गावे तय मेरा मन लागे, सोरठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया, संतन बेन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की तो पार ग्रामी किया रहा, कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है, ईगा सुख आगे मुख उजल जन का संग बड़ भागी पाई है, रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केत की उपमा कही है, अगम गोत्र सद अबनासी शरण संतन की लई है, निर्गुण नीज अनाद अपराधी और संतन की आही, बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह नानक लेहो निवाही, सोरठ महला पंजवा कर पहला जाके हृदय वसिया तू करते ताकि तैं आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निधान सुखदाते स्वामी सबते ऊच बढ़ाई रखाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख आघाई, सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने जा को तुदे आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यू अज्ञाना प्रगट पय सवठाई, सोई ज्ञानी सोई ध्यानी सोई पुरख सुपाई, कहो नानक जिस पय दयाला ताको मन ते बिसर न जाई, सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोए व्यापी कब ऊचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना ओड़क को ना पहुँचे, मेरे मान साध शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरना रही, फिर आवत बारो बारा रगाओ, वो जो परम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोग ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात यो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रा मेर है मिल सा संत नव लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर सबना करत उधारा, कौ नानक गुर बिन नहीं तरिए त्यो पूर्ण तत् विचारा, सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रगाओ, मुगत भुगत जुगत सज पाई गे सर्व सुखां का दाता, अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता, त्रमणी सुनिए रसना गाइये हृदय त्याइये सोई, करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई, वडे भाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला, सा संग नान गुण गावे सिमरे सदा गोपाला, सोरठ महला पंजवा कर स्नान सिमर प्रव्यापना मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाथे प्रसरणा प्रगटे पले संयोगा, प्रबाणी शब्द सुपाखिया गावो सुनो प्रो निदपाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो, सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बण आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर

पल सो सागर सर्व कटा पर पूरी रे पेहत सुनत सदा के संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेंत हो मित कर वर्णो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख दे उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया रे सोरठ महला पंजवा जिना बालको बहुत अंधेसरो ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुख मन नारी ऊंद कमल बिकसया देखो अजर ज पया जे ठाकुर को सुन अगाध बोध तोरदे गुरदया अरहाओ जोए दूत मैं बो संतावक ते पे आनक पया तरे बेनती राग ठाकुर ते हम तेरी सरणया जय भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुर दीना मेरा मन तन शीतल थेया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार

सेजन तृप्ता खाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही लाख बेदन जन आई रखाओ जे जन ओड गही प्रातेरी से सुविए प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लेलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तित घी लागा ते सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल से अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार खैलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरतिया नयन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रमिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे

दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिन मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखया पाई यो मन तेरा पाई रखाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो वाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पये सुख पाया संतन कह परसादे कहो नानक हरसो मन मानिया रंगरते विस्मादे। सोरठ महला पंजवा जेती समगरी।

मनवसे अवनासी ताको बिघन न को लागे, जो सदगुर अपने राखे चरण कमर बसेर अंतर अमृत हारस जाखे। हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महल्ला पंजवां माया मोह मगन अंधियार है,

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख के वाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी। जप अंध करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो।

मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, ऊंच नीच मैं जोस्त माणी, खड़कड़ माधो जिया, संतो काड़कड़ रहे आसमायो, पूर्ण पूर रहे हो सर्व में, जल थल रमैया आयो रघाओ, गुण निधान नाम जगावे, सदगुर परम चुकायो, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तब मैं रहे आसमायो, सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन होए आनंदा, दिन से जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ न विंद पावे, बौर न तिस ना भुखी, जा को नाम लैत तू सुखी, साथ साथ त्यावो ठाकुर कहो, मन तन जियरे मुखी रखाओ, सांध पावे होवे मन शीतल, अगन अंतर तुखी।

ए पीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो रखाओ। बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पावो, गुर पूरा फेटू वड़ पागी, जन नानक ते ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जा के सिमरन सब कुछ पाइये, विरती काल न जाई, तिस प्रत्याग अवर कतराचो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नानक प्रभु तुमरे बिसरत जगत।

प्रीत में अपने हर मंदिर सुखदाई हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इश पुजाई सोरठ महला पंजवा गुर के चरण बसे पीतर शुभ लखन प्रवकी ने हे कृपाल पूर्ण परमेश्वर नाम निधान मन चीने मेरो गुर रखवारो मीत दून चौनी दे वड़ियाई हो बानीता नीत रहाओ जी जन प्रसगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड़ियाई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल सती अगम अपार बिलश मनोद आना सुगमानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आदि।

हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हा दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्व कल्याण, रहाओ जीओ पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप ऐज राखी, नानक सद कुरबान, सोरठ महला पंजवां, दुरत गवाया घर प्रव्या पे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्र कृपा तारी, अपना बिरद समारिया, होई राजे राम की रखवाली, तूख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रखाओ, पतित उदाहरण सदगुर मेरा, मुझ का परवासा, बगसलय सर सच्चे साहेब, तुन नानक की अरदासा, सोरठ महला पंजवां, बगस्या पार ब्रह्म परमेसर, अगले रोग बेदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कार्य सगल सवारे, हर जन सिमरिया नाम आधार, ताव्यो तारे सदगुर पूरे, अपनी कृपा तार रखाओ, सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सब सद पाखिया, सोरठ महला पंजवां, भय किरपाल स्वामी मेरे, ते साचे दरबार, ता गुरताप गवाया पाई, ठांड पई संसार, अपने जी जंतिया पे रखे, जमे की हटतार, हर के चरण हृदय उरतार, सदा सदा प्रभ सिमरिगे पाई, दुख किल भे काटनहार, रहाओ, तिस की सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, कारण कारण समरसो पाई, सच्चे सच्ची सोए, नानक प्रभु ते आई गे पाई, मन तन शीतल होए, सोरठ महला पंजवां, संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रा विसरो नाही, मन चिंदे अड़ा फल पाई, रहाओ, सब गुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा थारी, पार ब्रह्म प्रापय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी, सरबन दान मंगल स्वरूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेसर, उदरिया सब संसारो, सोरठ महला पंजवां, मेरा सतगुर हवाला होआ, धार कृपा प्रभात दे राखिया, हर गोविंद नवा नरुआ, रहाओ, ताप गया प्रभ आ मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगते सा फल पाए, सतगुर कै बल जाय, हलत पलत प्रभ दोवे सवारे, हमारा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक धारिया, सोरठ महला पंजवां, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव किया पे रख, पूर्ण पई बढ़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी।

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे माता पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वे से वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण अधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी

रामदास त्रोवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया तो सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान छे बल पाई संतो दिन जन चढ़े सवाई रहाओ जी जस पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुपाय मिले गो

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व

की ओटा जो सिमरै हकीकत होवै उधरै सगले कोटा रगाओ। संत संग जस गाया इह पूर्ण गर्तन पाया को नानक आ मिटाया।

संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल किरपाल किरपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भग सिर पाओ जीव जने अपने, प्रताप।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नही दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कज बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार सोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे जल ही निर तन देखियो नरको संग शाड़।

रहे हो नगन फिरे हो बनमाही तट तीर्थ सब धरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीर्थ जाय बस्यो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी गैबर गैबर बहुबद दान दातारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नै मिल गए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडौत खड़ कर मारत रहता हौ करत बंधन में परया नै मिल गए ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहे आ वडी यार जा फिर जन्मे हरसो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा सेज सोने चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा।

संग लाई, अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई।

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखे, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

चारु राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अन कछ समझना परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अचतसा सिद्ध नम्रद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाध उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जौ तुम गिरवर तौ हम मोरा जौ तुम चंद तौ हम पै है चकूरा। माधवे तुमन तोरो तौ हम नहीं तोरे तुम स्यो तोर तमन स्यो जूर है रहाओ। जौ तुम दीवरा तौ हम बाती जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संतोरी।

शीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा बंके बाल पाग सिर डेरी यो तन हुए को पसम की ठेरी ऊंचे मंदर सुंदर नारी आराम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ऊंचा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास तुम्हारा चमरटा गांठ न जने।

न है। करक करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा का औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल। इहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कहे जन पीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोल पुन पदार्थ पाया, आनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपे छपाया। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाओ रसना रमत सोंत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो पीखन दुई नयन संतोखे, जय देखा तय सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपद, एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख। निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहं गुर प्रसाद।

सास मास तब जीव तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे पर्वत गारा, जे तू किसी ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोग छिपाई है पूर्व लिखे का लहना, नाम खसम का चेतन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक के सुनिए

प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जां सोए जै देखा तै रया समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मो देसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा परात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ सच सिमरे होवे परगास ताते बिखिया महे उदास गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुस आगे तरे साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा कर।

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभिमान अहंकार डूबे।

जो घर सेवे संत भगत इनके सा पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, अरख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवा।

तेरा वर्ण न जापे, रूप न लखिए, तेरी कुदरत कौन बिचारे, जल थल मैल रविया सब ठाई, अगम रूप गिरधारे, कीर्त करे सगल जन तेरी, तू अविनाशी पुरख।

सुखेत बढ़ायो कामल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लय फांकेओ ओ पार बस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रिय प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म सार पसायो पीतर तगुर ते सोजी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सो ठीठा अमृत रूठा तब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिनस ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब हो राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पए बिबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढे इस गुर कह कुरबाणी। तनासरी महला पंजवा जिसका तान मन तान सब किसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ विदनी की खटानी। जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रखाओ अमृत।

गीत हर चंदौरी बन हर पात्रे ए है तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत। जन्म जन्म के किल विग दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

मान छूट बिनस जाए परमाई अंधरूप रवे उसा मध्य जल कद पेख हो जाई तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तिसना सा बुझी है नानक त्रिपत अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतर संसारा जग स्नान ताप थान कंडे क्या यो जंत विचारा प्रभ की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड किसी पै सगले लर लर मुआ औ बलगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन कट।

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू सुमरत पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभ को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो। रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, त्रास नाही तिसना भूख, मन बासना रज बिखे ब्याद, पांच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर, रखे जन की आप, तरन तारण हर निद, दुख न सके ब्याप। साधु संग भजो गोपाल, आन संजम कृष्णा सूजे, ए जतन काट कल काल। रहाओ आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथे शासक, भगत करे विचार, मुक्त पाईगे साध संगत, बिरस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का, राज पूंजी ए

फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम त्याया ताते मोय धारी ओड गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेसर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम त्याए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

स्वामी सा मसलत प्रवान रघाओ पद परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनाश्री महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर रखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर भाखे जिन कै मन साचा विश्वास पेख पे स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखेओ तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कतहो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत पूत नहीं बिछड़े तो संगी गनिये बिनस जाए जो निमक मैं तो अल्प सुख भनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कश ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई आशल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप साम देव दयाल प्रभ।

शरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड निंद, ए भी करत गुदारी। मृत सिंह आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म मोरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

चरण कवन जाका मन रागयो अमेर सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा राव जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक

जामह रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते इक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रसव लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

गगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तना श्री मोहल्ला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अनदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ, कोई हो अक्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का राम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

बखानो चंचल मान दहत को धावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक हे बिदको जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसा चूक पवन पार परो रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डरो मन बक्रम हर गुण नहीं गाय ये जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजेओ पस ज्यो उधर परो कहो नानक प्राभ बिरद पछानो तब खो पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जावे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज सिला

ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान सच।

आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोन दर सच सचे केवा पारी उग प्यास आस क्यों दर जाए सा जियो तद गुर पूछो जाए नाम त्याय सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अन दिन नाम खाना करणी कार तुरो फुरमाई आ मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी तनासरी शंत महला पहला।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जेबो उसे तब कर बाहर आबो क्या मांगो कुछ सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभे बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कम ने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अधकाई अरहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का पद कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने तूकर कूकर जोन परमे तऊ लाज न आई राम नाम शाड़ अमृत ताहे बेख खाई तज परम कर्म विदन खेद राम नाम लेही

तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजे हौं बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबो।

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कश आए बो ना

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी जैत।

मेरे हीरे रतन नाम घर बसया बुरहा तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भाज राम नाम सब अर्था गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया बिरनावे जीवन बिरथा अरहाओ बिन गुर मूड पए है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे तबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण

हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे भारी बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। हरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परम एगा वारी माया पुयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तुम वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कछु न जाने गतमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिलिगे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जग जीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत

सदगुर प्रसाद पूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेहे ते आप बंधायो रहाओ समझना परी दिखे रस रचयो जिस हर को बिसरायो पंग स्वामी सो जान्यो नाहिन पर खोजन को तायो रतन राम कटही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बेन बिरथा जन्म गवायो जैत सरी महला नामा हारजू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गही कृपा न तेरी अरहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अभारा पय मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा कियो पाप मुद के कारण तैस को उठताया कटही भीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन का जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर शरणागत अपहे दान प्रव दीजे जयत श्री